0: भोले वाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले वाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
3: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है वा?

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बाबू बहिया तिहारी। थाम थाम थाम गोरी जरा थाम, नहीं लुट जाएगी राम का।

0: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,

0: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com।
1: बॉलीवुड के लेजेंड कलाकार सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

0: अरे अरे मैं भी हो गई लाल।
1: साधु साधु।
0: फिर रात हुई, एक बात हुई, चोरी चोरी चोरी मुलाकात हुई।
1: फिर
0: फुर, फुर, फुर, फुर। बताओ नी बड़ी क्या बात हुई।
2: कह दो
0: कह दो कह दो कह दो

0: रघुकुल रीत चला चती चल रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाए पर बचाना ना जाई
1: जाई जाई
0: बन चले।

0: ये गुड़म।
1: अरे अरे भालू आया?
2: नहीं आया।
1: तो फिर सो जाओ।
3: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर।

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जाणी है नाल चले सब कोए। चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जगले।

वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास, असंख भगत गुण ज्ञान विचार, असंख सती असंख दातार, असंख सूर मोह पक्षार, असंख मोहन लिवलाय तार, कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंधगोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई वलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वडियाई। जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई। सो पातशाह साह पत साहिब नानक रहण जाई।

अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एकोवेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राजमाल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हाथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पकाई उथे पाए नान गया जापै जाए।

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: दिस इज लाइका गोल्ड. Reminisce those classics.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: माय फ्रेंड, दिमाग के सर्किट में जब भी स्पार्क हुई है, स्टोन एज से लेकर न्यू एज तक तरक्की हुई है।
2: इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर स्टार्ट्स दिस सैटरडे द 19th ऑफ सितंबर एट 8 पीएम ऑन स्टार प्लस एंड जियो हॉटस्टार।
3: यूज योर ब्रेन नाउ, प्ले द गेम।
4: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
5: 40 million people listen to commercial radio each week. That's 80 million ears, give or take. Amplify your advertising at radiocentre.org.
6: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network. Breakfast with Deep Roger.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
3: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
4: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
5: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
6: It's Shashi Kapoor.

0: तो तुम क्या?
1: हाँ तो मैं क्या कह रहा था?
0: हाँ तो
1: मैं कुछ कह रहा था,
0: बोलो ना, भूल गए?
1: अरे हाँ भूल गया। चलो चलो घर चले।
2: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
3: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Breakfast with Deep Raja.
4: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Set Co Food Containers, total satisfaction.
1: Dubai is an opportunity. So now, be a part of it. Create wealth with a small investment every month. The New Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oasis, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the New Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
2: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
3: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
4: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
3: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर ZTV एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.

0: भाई जिन्होंने हमें अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर। मेरा नाम है अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो। बस इस वीकेंड पे ही रितु जी ने ब्रेक लिया है तो उन्हें कवर करने मैं आ गई हूँ। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है, सारे के सारे प्यारे प्यारे धुरंधर हमारे अपनी अपनी अटेंडेंस लगवा रहे हैं। पूछें आप सबसे कैसे हैं आप सब, बढ़िया है ना, होंगे ही। मिस किया मुझे, मैंने भी आप सबको बहुत बहुत मिस किया। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई कम हियर ऑन दिस हॉट सीट, यहाँ पे इस स्टूडियो में आप सबसे मिलने जुलने का और बातचीत करने का जो मौका मिलता है वो आई मीन इट मेक्स मी हैप्पी, है ना। एंड स्पेशली आप देखो ना, मौसम जिस तरीके से बदल चुका है हमारे यहाँ पे, ये गुलाबी ठंड जो आ गई है सुबह सुबह की, हमारे सबके जैकेट्स आ चुके हैं कबर्ड के बाहर और हम सब जो हैं इस ठंडक के साथ अपने रूटीन्स में आ चुके हैं। इस बार इतनी ज़बरदस्त गर्मी रही कि आप और हम झुलस गए गर्मी में, टैन हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, अब सितंबर में धीरे धीरे हम जा रहे हैं ठंडक की तरफ। तो हमेशा की तरह अश्विनी असाइनमेंट देगी, बिल्कुल देगी, ऐसे कैसे होगा कि बिना असाइनमेंट के शो चलता रहेगा। सो आज का मेरा सवाल समझ लीजिए या समझ लीजिए कि बस दिल की बात है। तो दिल की बात यानी सुबह सवेरे चाय कॉफ़ी ग्रीन टी हम सब लेते हैं, चाय आपके लिए क्या क्या क्या इंपॉर्टेंस रखता है चाय आपके लिए? फॉर मी चाय इज़ एन इमोशन, चाय इज़ एन शाबाशी, चाय इज़ एनर्जी एंड चाय इज़ बीइंग विथ माई सेल्फ। आपके लिए चाय क्या है? ठीक है, तो ये मेरा सवाल इस घंटे का। सेकेंड आवर हमेशा की तरह यादें होने वाला है, थर्ड आवर थ्री वर्ड गेम होने वाला है, तो ज़रूर वो सब जो रितु जी के शो में होता है वो सारी की सारी चीज़ यहाँ पे होने वाली हैं। तो फटाफट चाय के बारे में कुछ लिख के भेजना चाहते हैं, ज़रूर लिख के भेजिए।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपी एंड 80 पैसे। एंड डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Like a gold is five.
2: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
3: London, get ready for an unforgettable night.
4: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
3: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
4: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
3: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
4: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
3: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
5: Hamari rakshak hai wo.
6: Balaji Telefilms presents The Van, Force of the Forest.
7: Mujhe ye jo ajeeb si cheeze dikhai de rahi hai un sab ka matlab kya hai? Kaun kar raha hai ye?
6: Mystery, fantasy, action. The Van, starring Siddharth Malhotra and Tamanna Bhatia in cinemas Friday 25th September. For UK release details follow Bakrania Media on Instagram.
8: This Diwali डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
9: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
8: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है।
6: दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
9: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
10: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
9: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
11: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाए 0208839080 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
4: मोस्ट मॉर्गेज ब्रोकर्स चार्ज यू अ फी, बट वी डोंट
12: charge you a penny and we still put cash back in your pocket.
13: Here's how it works. When you remortgage through Cashback Remortgages, the bank pays us a commission. We take our share and we give the rest back to you as cashback.
12: No fee, no gimmicks, real money back. A better rate and cashback from a broker that costs you nothing.
13: Call 0208 706 0915 for a free, no obligation chat. That number once again, 0208 706 0915 or visit cashbackremortgages.co.uk.
12: Cashback Remortgages, the broker that gives you back.

0: Track, brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेते हैं घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। तो 10:24, इट्स 24 minutes past 10। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर। सैटरडे 19th of September एंड गणपति बाप्पा मोरिया। तो जिनके यहाँ पे भी गणपति बाप्पा आए हैं, आई एम श्योर आप सब बाप्पा के साथ में ये सारे डेढ़ दिन हो, पाँच दिन हो, तीन दिन हो या दस दिन हो, आप सब इन्जॉय कर रहे होंगे। मेरे यहाँ पे भी गणपति बाप्पा हैं वो पूरे के पूरे 10 दिन। और जब गणपति बाप्पा आते हैं तो घर का माहौल एक तो इतना प्रफुल्लित हो जाता है, अगेन आई लव माय हिंदी, कि बचपन की सारी यादें। एंड आई कम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार का वहाँ पे एंथुसियाज्म होता है व्हेन इट कम्स टू गणपति बाप्पा, इट्स एक्सट्रीम, मतलब उसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। सो वो जो मराठी गीत और वो अथर्वशीर शाम पे करते हैं, जो मंत्र चलते हैं घर में, इट्स एब्सोल्युटली एक नॉस्टैल्जिया हो जाता है कि सारे मतलब पेरेंट्स के साथ में, फैमिली के साथ में जिस तरीके से सेलिब्रेट करते थे। अगर आपके यहाँ गणपति बाप्पा हैं तो मेरी तरफ से गणपति बाप्पा को नमस्कार। आपके गणपति बाप्पा को बोलिए कि दुनिया में बिल्कुल सुख शांति और समाधान दे और सबको प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस दे। अब इस दुआ के साथ में आगे बढ़ रहे हैं हम, क्योंकि चाय के ऊपर हमने टॉपिक शुरू किया, सवाल शुरू किया है। तो सभी लोग चाय के बारे में उनकी इमोशन क्या है वो बता रहे हैं। वन थिंग विच आई मिस विद चाय इज चाय के ऊपर की मलाई, मलाई मार के जो चाय होती है, आहा उफ, आई सीरियसली मिस दैट। सो चाय लवर्स विथ मलाई, सो मलाई वाली चाय लवर्स प्लीज़ रेज योर हैंड्स और मुझे बताइए कि क्या आप मेरी कैटेगरी में आते हैं। एंड साथ में ज़रा बात हो जाए अबाउट दिवाली स्टोरी। तो फाइनल फ्यू डेज टू गो टू द दिवाली स्टोरी ब्रॉट टू यू बाय सनातन इवेंट्स एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। ये होने वाला है ओवो वेम्बली अरीना ऑन सैटरडे 27th of September। डोर्स विल ओपन एट 4:30 PM विद स्टूडेंट प्री शो फ्रॉम 5 PM टू 5:45 PM एंड द मेन परफॉर्मेंस विल बी फ्रॉम 6:15 PM टू 9:30 PM। टिकट्स आर अवेलेबल एट www.diwalistory.com।
0: Like a gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: मोहम्मद रफ़ी एंड आशा भोसले की आवाज़ में एक फूल दो माली से सुनाया आप सभी को ये गीत। वीकेंड है यानी फुल ऑन चिलैक्स रिलैक्स एंड अपने अपने काम से काम, ये वाली चीज़ होती है। तो वीकेंड्स पे गैदरिंग्स होती हैं, उसके बाद में घर के काम होते हैं, बिंज वॉचिंग होती है एंड जो टू डू लिस्ट थी आइदर उस टू डू लिस्ट को हम करते हैं या फिर नहीं करना, आज कुछ नहीं करना बिकॉज वीकेंड है। दैट इज़ वॉट एक्चुअली हैपन्स विद मोस्ट ऑफ अस, है ना। आई वॉज रियली एक्साइटेड टू बी हियर। सो बता दूँ कि आज और कल सुबह ओनली दिस वीकेंड आई एम कवरिंग रितु जी, शी विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीकेंड। सो समय जो है आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और साथ में बढ़ रहे हैं हम। तो सितंबर की 19 तारीख हो चली है 2026, जो स्पीड में भागा है ना इस साल, तो समझ भी नहीं आ रहा है कि समय कहाँ जा रहा है और इस समय के साथ में जा रहे हैं आगे आप और हम। बहुत सारे फैंटास्टिक गीत यहाँ पे प्लेलिस्ट में आप सबके लिए लाइंड अप है। नेक्स्ट आवर में यादें एंड उसके बाद में थ्री वर्ड्स वाला सॉन्ग वो भी होने वाला है। माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो।
1: हॉलिडे ब्रेक्स आर ब्रॉट टू यू बाय साउथ ओल्ड ट्रैवल।
0: South World Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact South World Travel today on 020-8574-8410. South World Travel is at all protected.
1: Holiday breaks were brought to you by South World Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southworldtravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: If we keep using water like we do now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Yep, so we need everyone to use 28 litres less water every single day.
4: How? Well, if everyone spent 2 minutes less in the shower, that'd do it.
3: But we're not just talking households, we're talking the water industry and businesses too. Everyone has to do their bit.
2: Because when we work together,
3: it all adds up.
5: Come on you lot, search Let's Save Water.
1: The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
6: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
7: TravelHub बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट TravelHubWorld.com।
8: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: मैं हूँ नीसा नासिर, लाइका गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में। मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।

0: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 48 मिनट्स पास्ट 10। आप सभी ने ट्यून इन किया है मॉर्निंग शो विद रितु। माय नेम इज अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो मॉर्निंग फ्रॉम 10 AM to 1 PM। सो हमारे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स, बिल्कुल हमारे यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि आप हमें हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, लिसनिंग टू यू जी जरूर कर सकते हैं। अराउंड द ग्लोब हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें मैसेज करके बताते हैं कि वो हमें सुन रहे हैं। तो जब बात करते हैं कुछ साइकोलॉजिकल फैक्ट्स की, हो सकता है कि इसमें से कुछ फैक्ट्स आपको पता है, हो सकता है कि नए फैक्ट्स हों। सो क्या आप जानते हैं कि जिन्हें सपने नहीं आते, हमारी जान पहचान में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान हमें मिलता है जो कहता है कि हाँ सपने अपने, मुझे सपने नहीं आते। सो जिन्हें सपने नहीं आते, दे हैव अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। दिस इज नॉट मी सेइंग दिस, दिस इज साइकोलॉजिकल फैक्ट्स। ओके, अगर आप कहीं घूम रहे हैं, आपके घर में, रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स के यहाँ कहीं पे छोटी बेबीज अगर आपको बहुत देर तक स्टेयर कर रहे हैं, आपकी तरफ देख रहे हैं और फिर मुस्कुराने लगते हैं, आपकी तरफ देख के खेलने लगते हैं आपके साथ, तो आप बड़े अट्रैक्टिव हैं उनके लिए। एक अट्रैक्शन की जो परिभाषा होती है ना, वो उनके लेवल पे कैसे वो करते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन आई एम श्योर आप सबने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है। एंड जो लोग खुद से बतियाते हैं, कौन कौन है भाई मेरी कैटेगरी में, आई टॉक अ लॉट टू माई सेल्फ, जो लोग खुद से बतियाते हैं दे आर बेटर एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई थिंक या ओवर द टाइम इट हैपेंस, है ना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट कि जो लोग दूसरों को जल्दी माफ़ कर देते हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत गहरे लेवल पे पेन देखा हुआ होता है, उन्हें पता होता है कि वो कितना हर्ट करता है। सो इसीलिए वो लोगों को जल्दी माफ़ कर देते हैं। इस आवर के आखिरी गीत की तरफ बढ़ रहे हैं आप और हम। डॉन फिल्म से ज़रा मस्ती हो जाए, किशोर कुमार की आवाज़ में पान वान खा लेते हैं, मस्ती कर लेते हैं और अगले आवर की तरफ हम धीरे धीरे बढ़ते हैं। यादें होंगी नेक्स्ट आवर में, उसके बाद में 3 word game। दिस इज अश्विनी सिटिंग इन फॉर रितु।
1: Like a Goon, officially London's number one Asian retro music station.
2: ये है Like a Goon.
3: तुम देना साथ मेरा.
4: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: सर, जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर। मेरा नाम है अश्विनी, आई एम सिटिंग इन फॉर ऋतु शर्मा टुडे एंड टुमारो, सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक। सेकेंड आवर आप और हम बढ़ रहे हैं आगे। तो मेरे प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स, बिल्कुल आप लोगों के जो अब दे दनादन मैसेजेस आना शुरू हो गया ना, मज़ा आ रहा है बिल्कुल। यस, देखिए, जो एक कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन ज़रूरी होता है किसी भी रिश्ते में, तो वो रिश्ता हमारा ये कम्युनिकेशन पूरा करता है, हमारा व्हाट्सएप नंबर जो आपको दिया गया है। यहाँ पे बहुत बड़ी सी स्क्रीन लगी है जिस पे आपके मैसेजेस आते रहते हैं, जिसे देख के हम भी मुस्कुराते हैं और आपको जब हम रिप्लाई करते हैं तो आप भी मुस्कुराते हैं। बहुत सारे लिसनर्स ने उनके घर में क्या ब्रेकफास्ट बन रहा है इसकी प्यारी प्यारी पिक्चर्स भेजी हैं। माई सलाइवरी ग्लैंड्स आर गेटिंग एक्टिव, बट लेट मी टेल यू, मैं भी खा पी के आई हूँ। मराठी लड़की हूँ तो पोहा उपमा बहुत कॉमन होता है हमारे यहाँ पे। आई डिड ऐड माई कांदा पोहा सुबह बिफोर कमिंग इन टू स्टूडियो। सो बिल्कुल अब के किचन में जो भी बन रहा है बिल्कुल मुझे तस्वीरें भेजिए। आगे का पूरा एक हफ्ता मेरे यहाँ पे क्या बनना है तो वो मेरा वो प्रॉब्लम ना सॉल्व हो जाएगा, है ना। हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, किचन में क्या बनना चाहिए ये तो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है भाइयों और बहनों। सो अगले गीत की तरफ हम बढ़ेंगे, बट नाश्ते के बारे में तो यस, देखो यहाँ पे पिक्चर्स आना शुरू हो चुकी हैं। अब सेकेंड आवर में कहना चाहूँगी और पूछना चाहूँगी आप सबसे, सबसे पहले डू यू बिलीव कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, कि जब भी हमारे हाथ से कुछ चीज़ जाती है तो बहुत कुछ बड़ा हमारे लिए ऊपर वाले ने रिप्लेसमेंट रखा होता है। इस चीज़ पे हमने पहले भी कई बार बात की है, लेकिन डू यू थिंक कि वो जो पेशेंस नीडेड है वो आपके पास में है, एंड डू यू एक्सपीरियंस द गिफ्ट ऊपर वाला जो आपके लिए रखता है जब वो चीज़ें आपके हाथ से निकल जाते हैं। आई एम करंटली एक्सपीरियंसिंग दैट। आपका अपना अनुभव क्या है ज़रूर बताएंगे, बताइए, और छोटी छोटी एम्बेरसिंग चीज़ों के बारे में बात करेंगे कुछ ही देर में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपए एंड 80 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। गेट ऑल द लेटेस्ट ट्रैवल अपडेट्स फॉर लंदन एट ब्रेकफास्ट एंड ड्राइव।
2: होम इज वेयर इट ऑल बिगिंस, and Starbucks is the home of autumn. We've made the season a thing, so we know our way around it. A taste of autumn, however you like it. Whether you want to keep things hot with the iconic pumpkin spice latte, or play it cool with our new iced apple crumble matcha latte. Come on in and stay as long as you'd like. After all, you're back at the home of autumn. Subject to availability while stocks last.
3: ये है
4: लाइका गोल्ड।
5: ये रिश्ता क्या कहलाता है।
6: This part of the show is brought to you by ये रिश्ता क्या कहलाता है, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
1: रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
2: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
1: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
2: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
1: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर. टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: हैरो, इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान. साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
0: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
4: To buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
0: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
5: Dubai is the place. 11,
0: 11. Call the Danube Properties London office today on 0203-963-5757 and book your meeting.
6: Danube 11, 11. Danube Properties.
7: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन.
8: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
7: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
8: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर.
9: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
8: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन. ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क.
10: लाइका गोल्ड, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन, अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर. एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइका गोल्ड और ऑनलाइन सुनो laikagold.com पे. Feel good track brought to you by Dairy Valley.
0: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घर, यहाँ देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 11:26. इट्स 26 past 11. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर MM. ओके, सो यादी में आपको हम सुनाते हैं 50s के एरा के गीत. सो नया दौर फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1957 में, आशा भोसले मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सुनाए उड़े जब जब जुल्फें. Every instrument used in this song is like oof. मतलब अगला भी गाना जो सुनोगे आप उफ ही करने वाले हो. सो एनी वे, इसमें जो घुंघरू और जो ढोलक यूज़ होता है, आई जस्ट लव दैट एंड दैट लाइन, यू नो, उस गांव के सुअर के भी सद के जहां मेरा यार बसता. मतलब क्या प्यार है, कितना क्या लेवल का प्यार हो सकता है कि इवन द सुअर गेट्स द लव देयर. आई मीन फैंटास्टिक लव इज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग कि वो सारी चीज़ें आपको सुंदर दिखाता है, बनाता है और महसूस कराता है. यादें में अगला गीत आप सबके लिए पेइंग गेस्ट, विच वॉज रिलीज इन 1957, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में, वन ऑफ माई फेवरेट्स.
0: ये है लाइका गोल्ड. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: What a beautiful track this was. Lata Mangeshkar and Nitin Mukesh ki awaaz mein Na Khuda, which was released in 1981. Us film se sunaya ye geet. Mera naam hai Ashwini. I am sitting in for Ritu today and tomorrow. Ji haan, next week hamari pyari Ritu ji will be back on this hot seat apna program present karte hue. So, kuch geet aise rehte hain jo bas achhe lag jaate hain, hai na? Unhi mein se ye geet tha. And ye wala geet हमारे रेडियो पे ही प्ले किया गया था, एंड कभी तो ये गीत मुझे अच्छा लग गया, तो उनमें से ये एक गीत है. मैं आप सबसे बात कर रही थी कि हम हमारी लाइफ में, रोज़मर्रा की लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बड़ी एम्बैरेसमेंट फील होती है हमें, है ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आई एम श्योर आप सब ने भी एक्सपीरियंस किया, क्योंकि मैंने भी इसमें से कुछ ना कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस की है. वेविंग बैक एट समवन हु वाजंट वेविंग एट यू, एक्चुअली होता है ना कि भीड़ में से आ रहा हूँ, कोई तो आपको वेव कर रहा नहीं हो, लाइक ओ माई गॉड ये कौन है, मैं इनको जानती हूँ जानता हूँ नहीं. एंड सेइंग यू टू टू द वेटर व्हेन द वेटर सेज एंजॉय योर फूड एंड द वेटर गिव्स दैट लुक कि इनको भूख लगी है, है ना? ट्राइंग टू पुश अ डोर दैट सेज पुल देन प्रिटेंडिंग टू चेक योर फोन. आप कितने प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं, ये एक्चुअली पुल या पुश वाला जो डोर पे लिखा रहता है ना, वो इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ द पीपल नहीं पढ़ते. आप भी पढ़ते हैं या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा. देन ट्रिपिंग ऑन अ फ्लैट पेवमेंट एंड डूइंग दैट लिटिल जॉग टू प्रिटेंड यू मेंट इट. गिरने के बाद कभी ऐसे होता है कि आप हंसे हैं जोर से कि इसके पहले दुनिया मुझ पर हंसे मैं खुद हंस दूँ, ऐसे हुआ है? आई हैव डन दैट प्रीवियसली, पक्का किया है. रियलाइजिंग यू हैव हैड ईयरफोन्स विथ नो म्यूजिक फॉर 20 मिनट्स एंड यू हैव बीन नॉडिंग अलॉन्ग टू नथिंग. ऐवें ही शो करें. एक तो मुझे लगता है ये हेडफोन्स पहनना ना, बेसिकली दिस इज एन एस्केप फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. लाफिंग टू लाउड एट योर ओन फोन इन अ क्वाइट ट्रेन कैरेज. यस, वी ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड, ऐसे लोग होते हैं. कॉलिंग योर टीचर और बॉस मम बाई मिस्टेक्स. हाँ माँ. एंड देन यू लाइक ओ मैं तो ऑफिस में हूँ यार, मैंने माँ कहाँ से बोल दिया अभी. हाँ मम्मा जो भी है. गोइंग टू से बाय ऑन अ कॉल देन बोथ ऑफ देम यू से इट 3 times. हाँ चलो बाय मिलते हैं. हाँ बाय. यस आई थिंक विथ एशियन पीपल हम बाय बोलने के बाद में भी अगले 10 मिनट ना बातें करते रहते हैं. एंड वॉकिंग इन टू द रॉन्ग हाउस कार बिकॉज इट लुक लाइक योर्स. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस एज वेल. हाउस तो नहीं लेकिन कार जरूर हुआ रहेगा. एंड गेटिंग कॉट टू टॉकिंग टू योर सेल्फ और वर्स आर्ग्यूइंग विथ योर सेल्फ इन द किचन. एक्चुअली होता है. एंड अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं ना, वो खुद से बतियाते रहते हैं पूरे दिन तक कुछ चीज़ों को लेके, जब उनके साथ में बाहर की दुनिया में कुछ मतलब किस्सा हो गया लेकिन वो उनको बोल नहीं पाए, पर पूरे दिन भर अपने आप से उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने मुझे ऐसे कैसे धक्का दे दिया, ट्रेन में जगह नहीं दिया, हट सकता था, ऑल दो स्टफ. तो क्या ऐसी एम्बेरसिंग चीज़ें आपने भी महसूस की है? इनमें से कौन सी की है लिख के भेजना चाहते हैं. हमारा व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के लिए है. Podcast update. Episode number 34 is there to watch and listen. Title is Modern Harassment, hosted by Deep Raja. Deep Raja speaks to Sangeeta Pandey of IIW and Gayatri Shenoy, Principal Business Analyst, about modern harassment. They explore modern harassment at work, family, and when one should speak up. Like Extra Podcast, available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple, and other major streaming platforms.
1: Like Extra is here. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Home is where it all begins, and Starbucks is the home of autumn. We've made the season a thing, so we know our way around it. A taste of autumn, however you like it. Whether you want to keep things hot with the iconic pumpkin spice latte or play it cool with our new iced apple crumble matcha latte. Come on in and stay as long as you'd like. After all, you're back at the home of autumn. Subject to availability while stocks last.
3: Ye hai. Like a gold. Like a gold. TravelHubWorld.com. Kamyabi ke shandar 22 baras celebrate kar rahe hain by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays. Hum se sasta kahi nahi mil sakta. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
4: TravelHub. Best service with unbeatable price.
3: At all protected.
4: Visit TravelHub.com.
5: 073-00-99-8823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
6: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
7: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
6: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
7: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
6: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
7: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
6: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
7: ICICI Bank UK PLC is authorized by the PRA and regulated by the FCA and PRA.
6: Creatives, Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
7: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
8: खाखरा क्रंच, भाखरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
9: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर।
8: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स।
10: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
11: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
12: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
11: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
12: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
13: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
14: Sonatours.co.uk special offers with amazing discount. 16 days China for 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours on 0208-951-0111.
15: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
1: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. London's biggest classics all day. Leica Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 128.57 इंडियन रुपी, 85.26 अफगान अफगानी, 371.38 पाकिस्तानी रुपी, 164.51 बांग्लादेशी टाका, 443.48 श्रीलंकन रुपी, 173.46 कैनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर्स, 63.72 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com. Or visitors at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे एक बार घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 11, 11:50, 19 सितंबर सैटरडे. सेकेंड आवर के एंड तक पहुंच रहे हैं हम, तो आखिरी गीत इस आवर का सुना रही हूं आपको जुगनू फिल्म से, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में. गिर गया झुमका तो साहब कहते हैं गिरने दो, है ना. प्यारा सा गीत आप सब के लिए, एंड यही गीत हमें ले चलेगा 12 o'clock की न्यूज़ की तरफ. उसके बाद आपका मेरा साथ और एक घंटे के लिए. माय नेम इज़ अश्विनी एंड आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो. रितु जी विल बी बैक अगेन नेक्स्ट वीक. तो आज का अगला एक घंटा एंड टुमारो अगेन 3 hours फुल ऑन मस्ती मजा गपशप इंटरेक्शन होगा यही आपके अपने लाइका गोल्ड रेडियो पे. आप हमें सुन रहे हैं इन लंदन, मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर.
0: Across Greater London and Greater Manchester, this is Ritu Sharma.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar.
4: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
5: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
4: ये तो बताओ कोई पता चला?
5: गुरु गुरु
6: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
4: साधू तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
7: शीघ्र शीघ्र.
6: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th of November.
8: टू बुक कॉल 0208-514-5400. Online at Eventbrite.
9: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.

0: आइए जी, आइए तीसरे आवर में हम और आप बढ़ रहे हैं इस म्यूजिकल जर्नी के आखिरी पड़ाव में. वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द मॉर्निंग शो एंड माय नेम इज अश्विनी. आई एम सिटिंग इन फॉर रितु टुडे एंड टुमारो फ्रॉम 10 AM टू 1 PM. 12:16 पहला गीत हमने सुनाया 90s के बच्चे खुश हो गए, दूसरे गीत सुनाया तो 80s के बच्चे खुश हो गए, अभी तीसरा गीत सुनाएंगे तो ये 70s वाले बच्चे खुश होने वाले. लेकिन इस आवर का जो मेन फीचर है 3 word वाला गीत, मतलब आराम से बैठ के खाना पीना चल रहा है, कोई असाइनमेंट नहीं करनी, ऐसे तो नहीं हो सकता. सो अब ये कौन से गीत के बारे में मैं बात कर रही हूँ, ज़रा लिख के भेजिएगा. निगाहों लाखों में, ठीक है, ये कौन से गीत के ये 3 शब्द हैं. निगाहों लाखों में, किसी गीत के मैंने शब्द लिखे लिए हैं, आप ज़रा लिख के फटाफट मुझे भेजिए और बताइए ये कौन सा गीत है.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीज एंड 80 पैसे. डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI यूनो मोबाइल ऐप. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स. विजिट SBI UK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच. T's and C's apply.

0: और अ फैंटास्टिक ट्रैक किशोर कुमार की आवाज में शर्मीली फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। आर्टिस्ट ऑफ द वीक है द स्टाइलिश द फैबुलस शशि कपूर, उन्हीं पे फिल्माया गया ये गीत था। 12:30 एंड आधे घंटे में मैंने आप सबको कर देना है टाटा बाय बाय। और सवाल आप सबके लिए, थ्री वर्ड्स, ये कौन से गीत की बात हो रही है? निगाहों लाखों में, ये कौन से गीत के बारे में मैं पूछ रही हूँ? जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, दे दनादन हमारे साइलेंट लिसनर्स ने ऐसा आंसर दिया सबके सब, मतलब फैंटास्टिक। हाँ, आई एम रियली इम्प्रेस द वे हमारे लिसनर्स इतना मशगूल रहते हैं हमारे शोज में और जितना साथ देते हैं, क्या बात है। लव यू ऑल। ओके, सो नाउ बिकॉज आई लव यू ऑल, सो एक टिप्पणी, एक टिप देना चाहती हूँ आप सबको। तो क्या आप जानते हैं कि आपके जो ग्रे हेयर होते हैं वो बेसिकली स्ट्रेस से आते हैं? और अगर आपके स्ट्रेस पे आपने काम किया और आप स्ट्रेस मुक्त हो गए, आई लव माई हिंदी अगेन, स्ट्रेस अगर वो स्ट्रेस जो है आपकी ज़िंदगी से दूर हो गया तो आपके बालों का ओरिजिनल कलर वापस आ जाता है। ये मैं नहीं कह रही, कोलंबिया यूनिवर्सिटी साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड द फर्स्ट क्वांटिटेटिव एविडेंस दैट स्ट्रेस इंड्यूस्ड ग्रे हेयर कैन एक्चुअली रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल कलर व्हेन स्ट्रेस इज एलिमिनेटेड। ओके, तो प्रॉपर स्टडी किया गया है इस पे एंड इसी की वजह से ये कह रहे हैं कि अपने स्ट्रेस को दूर भगाइए और अपने बालों का कलर वापस पाइए। पर फिर हेयर कलर इंडस्ट्री का क्या होगा अगर स्ट्रेस रिमूव हो गया तो? सोचो। नेक्स्ट ट्रैक, अगेन अ ब्यूटीफुल ट्रैक, वन ऑफ माय फेवरेट्स।
1: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स। फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: What a lovely track, ना असली नकली 1962 में रिलीज हुई थी, तो 60s वाले बच्चे भी अभी खुश हो गए हाँ, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज़ में। अच्छा ये गीत ना सिर्फ प्यार में पागल दीवाने कपल्स जो हैं उनके लिए नहीं, मुझे तो लगता है ये ना फ्रेंडशिप पे भी होता है। सो दिस वीक समटाइम आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड एंड होता है ना फ्रेंडशिप में हम लोगों की कुछ ना कुछ गपशप चलती रहती है, कुछ चीज़ें इधर कुछ चीज़ें उधर हो जाती है। सो आई जस्ट सेड नो आई हैव अ सॉन्ग डेडिकेटेड टू यू, तुझे जीवन की डोर से बांध दिया है तेरे जुल्म सितम सर आँखों पर। तो ये मुझे लगता है कि ये गीत ना उस हर रिश्ते के साथ में रहता है जो आपके साथ जिंदगी भर रहता है।
1: Brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Riti Sharma on Like a Gold. The Ritu Sharma Show with Ritu Sharma.
4: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
3: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: Southall Travel is known for its competitive holiday deals to Dubai. Contact Southall Travel on 020-8574-8410. Southall Travel is at all protected.
3: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
5: Is the cost of your home insurance going through the roof? Maybe it's time to move to Tesco Insurance. Tesco Home Insurance has been recommended by Which? Since September 2025. And if you've a Tesco Club Card, it unlocks an exclusive discount. Over 500,000 people have made themselves at home with us. So why not see how much you could save with your Club Card? Just search online for Tesco Home Insurance. Every little helps.
6: लाइका गोल्ड ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
7: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
6: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
7: विजिट ट्रेवल हब world.com।
8: We're finally going home for the wedding.
9: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
8: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
9: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
8: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
9: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
8: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply.
10: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.

0: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes. This is Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 128.58 इंडियन रुपी, 85.27 अफगान अफगानी, 371.41 पाकिस्तानी रुपी, 164.52 बांग्लादेशी टाका, 443.52 श्रीलंकन रुपी, 173.48 केनियन शिलिंग, 1.33 यूएस डॉलर्स एंड 63.73 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Gold. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £104.70 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 47 मिनट्स पास्ट 12. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन मिडलैंड्स एंड ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द मॉर्निंग शो विद ऋतु. मेरा नाम है अश्विनी एंड आई वाज कवरिंग ऋतु टुडे एंड टुमारो एज वेल. तो सुबह 10 से 1 रहेगा आपका और मेरा साथ. जी हाँ, तो 60s वाले बच्चे भी फाइनली खुश हो गए. 60s के बच्चे पूछने लगे कि अच्छा, सारे 90s, 80s, 70s के बच्चे खुश, हमारा क्या? आई एम श्योर फिर वही दिल लाया हूँ. लाखों है निगाहों में. जो मैंने सवाल पूछा था उसका सही जवाब आप सारों ने दिया, तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी तालियां. प्लीज़ अपने आप को जरा जस्ट पैट योरसेल्फ. भाई बड़े ही फैंटास्टिकली इन्वॉल्व रहते हैं आप शोज़ में एंड तहे दिल से धन्यवाद. सो मिलेंगे कल सुबह, लेकिन उसके पहले बता दूँ कि अनुराग की जगह आज आ रहे हैं हमारा बड़ा ही हैंडसम राजवीर, हमारा जो मुंडा है वो आ रहा है आपका साथ दे रहा है. इस आवर का आखिरी गीत वन ऑफ माई फेवरेट्स अगेन, लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में प्यासा सावन से. सो हमेशा की तरह बस स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी सुंदर है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए. प्यार दो, प्यार लो, आपके जहन और दिल में जो है बताते चलो. सी यू ऑल टुमारो, लव यू ऑल, बाय.
2: ये है Like a Gold.
3: Hey, this is Sandy Shah, and if you love your 40s and 50s music, then join me on Vintage Gold every weekend between 7 and 10 p.m. on Like a Gold. Make it a date.
2: Ye hai Like a Gold.
4: Like a Gold. Kyunki saans bhi kabhi.
5: This part of the show is sponsored by Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahu Thi. Every day at 9 p.m. on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
6: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
7: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
6: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता.
7: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September.
8: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो.
7: Book now on DiwaliStory.com before they are gone.
9: Official TV partner, ZTV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners, Leica Radio Network.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
13: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
14: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
13: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
14: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.

0: दिल दीवाना बिन सजना के माने ना, दिस सॉन्ग फ्रॉम द सुपरहिट मूवी मैंने प्यार किया। ये पिक्चर किसने नहीं देखी होगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी, सलमान खान, भाग्यश्री, एंड दिस वाज आल्सो द डायरेक्टोरियल डेब्यू ऑफ सूरज बड़जाटिया। तो एक बड़ी मजेदार ऐसी इंफॉर्मेशन है। सो व्हेन सूरज बड़जाटिया वाज कास्टिंग फॉर दिस मूवी, उन्होंने काफी लोगों से बात की बिकॉज इट वॉज हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू। एंड द राजश्री मूवीज वर वेरी सिंपल, जहां पे हीरोज को धोती कुर्ता पहनाया जाता था। सो ही वाजंट श्योर हु शुड ही कास्ट बिकॉज दिस वाज क्वाइट अ मॉडर्न मूवी फॉर द राजश्री फिल्म्स। सो काफी सर्च हुई एंड देन सलमान खान ऑडिशन, बट ही वाज सलमान खान वाज रियली स्केप्टिकल अबाउट डूइंग प्रेम बिकॉज ही थॉट कहीं प्रेम को भी धोती कुर्ता पहना दिया देन लाइक उनका स्टार्टिंग ऑफ द करियर में ही वो इमेज बन जाएगी। बट देन व्हेन सूरज बड़जाटिया नरेटेड द स्क्रिप्ट, सलमान खान सेड यस दिस मूवी इज मी एंड देन वी हैड आ प्रेम। आई एम वीर इन फॉर द लवली अनुराग ऑन गोल्डन रॉक ऑन योर फेवरेट रेडियो स्टेशन लाइक अ गोल्ड, प्लेइंग सम अमेजिंग प्यारे वाले गाने ओनली फॉर यू।
1: WhatsApp message like a gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Ye hai Laika Gold, 10:35 AM.
3: This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera. Every day at 8 PM on Star Plus. And stream it anytime on Jio Hotstar.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide.
1: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
2: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
1: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
2: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
1: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
2: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई.
3: संगीत साधना है. साधना
4: है. संगीत आत्मा की आवाज है.
5: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं.
6: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए,
7: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान.
8: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से, शनिवार और रविवार 7:30 PM UK, आपके अपने जी टीवी HD और Z5 ऐप पर.
9: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
10: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
11: Dubai is the place.
10: 11, 11. Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
12: Danube 11, 11. Danube Properties.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन
14: हमारी रक्षक है. वो
15: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
16: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
15: मिस्ट्री, फैंटेसी, एक्शन, द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th September. फॉर UK रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
17: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
18: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
17: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
19: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही टीम अप के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 02087677627.
20: sonajewelers.co.uk स्पेशल ऑफर जापान चेरी ब्लॉसम टूर इन मार्च एंड अप्रैल 2027. बुक बिफोर द एंड ऑफ सितंबर एंड गेट अप टू 300 ऑफ. कॉल सोना ज्वेलर्स नाउ ऑन 02089510111.
21: Like a Gold, London का number one Asian retro music station. अब available है Greater London में 10:35 AM पर DAB Digital Radio पर. Alexa पे बोलो play Like a Gold और online सुनो likeagold.com पे.
22: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
23: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: कुछ कहता है ये सावन. दिस सॉन्ग फ्रॉम द मूवी मेरा गांव मेरा देश इन द वोकल्स ऑफ लता मंगेशकर एंड रफी साहब. दिस मूवी वाज रियली इंटरेस्टिंग. इसमें थे धर्मेंद्र एंड आशा पारेख इन द लीड रोल्स एंड अ वेरी डैशिंग हीरो प्लेड विलन इन दिस मूवी विनोद खन्ना. सो एक्चुअली जब विनोद खन्ना स्टार्टेड यू नो हिज करियर ही यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ नेगेटिव रोल्स आन मिलो सजना मेरा गांव मेरा देश एंड देन ऑफकोर्स ही बिकेम this dashing superstar and then we got our main lead hero. Well, aisi pyari baatein to mere saath hoti hi rahengi on Golden Rag with Anurag on your favorite radio station like a gold.
1: Tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. More flavors, more convenience, more yum. Grab your Coca Bowl today.
2: Hello, wake up with me, Kajal, on The Breakfast Show, where I take you down memory lane, get inspired by Morning Mantra, Monday to Friday, 6 a.m. to 10 a.m., like a gold and like a radium Midlands.

0: दिशा सुप्रीम एक्स्ट्रा लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस इंडल्ज विद दिशा अवेलेबल एट ऑल इंडिपेंडेंट स्टोर्स नेशन वाइड.
1: दिस गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट द स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस एंड स्प्रेड फेस्टिव जॉय विद योर लव्ड वंस इन इंडिया
2: विद ICICI बैंक UK. सेंड मनी टू इंडिया एंड गेट अ 20 पैसे प्रेफरेंशियल एक्सचेंज रेट.
1: सिंपली यूज प्रोमो कोड Ganesha20 व्हेन यू ट्रांसफर. द प्रमोशनल पीरियड इज 14th सितंबर टू 24th सितंबर 2026.
2: सो दिस गणेश चतुर्थी मेक एवरी रूपी काउंट एंड शेयर द जॉय फ्रॉम द UK टू इंडिया.
1: ICICI बैंक UK. ट्रांसफर नाउ. सेलिब्रेट टुगेदर.
3: ICICI बैंक UK PLC इज ऑथराइज्ड बाय PRA एंड रेगुलेटेड बाय द FCA एंड PRA. TLCs apply.
4: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए. दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम. साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में लाके दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे. तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग. कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410. दैट्स 8574-8410.
5: साफो ट्रेवल protected.
6: sonatours.co.uk special offer holiday of a lifetime with amazing discount. 14 days Canadian Rockies and Alaska cruise in 2027. Book before the end of September and get 400 off or lose the discount. Call Sonatours now on 0208 951 0111.
7: On Rug with Golden Rug.

0: आने वाला पल जाने वाला है. दिस गाना इन द वोकल्स ऑफ किशोर दा फ्रॉम माय ऑल टाइम फेवरेट मूवी गोलमाल. आई थिंक अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी एंड माय फेवरेट उपल दत्त वर अमेजिंग इन दिस मूवी. कभी भी देख सकते हैं. वन मोर ट्रैक दिस आवर एंड आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: Leica Radio Network, broadcasting across Greater London.

0: तेरी बिंदिया रे, दिस प्यारा वाला गाना फ्रॉम द मूवी अभिमान. आई मीन व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग दिस इज, एंड आई लव द मूवी. यू नो अमिताभ बच्चन ने जो एक्टिंग की है अबाउट दिस मेल ईगो, एंड जया बच्चन वॉज सो अडोरेबल इन दिस मूवी. इफ यू नॉट वॉच्ड इट, आई एम श्योर आप लोग ने देखी होगी, बट इफ यू नॉट वॉच्ड इट, इट्स अ रियल वॉचेबल मूवी. डू सी इट.
1: By Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store. Like a gold. On Rug with Golden Rug.

0: वादा कर ले साजना, एक और वादा है, नेक्स्ट आवर भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं. वन मोर ट्रैक दिस आवर, बट यू स्टे ट्यून्ड, 'cause आई विल बी विद यू नेक्स्ट आवर.
1: दिस इज लाइक अ गोल्ड नॉन स्टॉप.

0: हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, बट मुझे तो आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लवली मैसेजेस. आई मीन आपके सारे मैसेजेस बहुत ज्यादा प्यारे हैं. देयर इज वन पर्टिकुलर मैसेज दैट आई डेफिनेटली वांट टू रीड एंड दैट्स फ्रॉम राधिका जी. आई मीन आई वॉज लिटली लाफिंग व्हेन आई रेड दिस मैसेज एंड सच अ स्वीट मैसेज. सो व्हाट शी इज रिटन इज, वीर जी मैं रेडियो बंद करने जाती हूँ क्योंकि मुझे सोना है, और जैसे ही मैं रेडियो बंद करती हूँ आप एक और गाना प्ले कर देते हैं जो मेरा फेवरेट है, तो मैं सो ही नहीं पा रही हूँ. वेल आई मीन इतना प्यारा वाला मैसेज. इस आवर भी बहुत सारे प्यारे प्यारे गाने हैं राधिका जी, टू कीप यू अप. एंड ऑफकोर्स आप अपना काम कर सकते हो इन द मीन टाइम, बिकॉज प्यारे वाले गाने आते ही रहेंगे ऑन लाइका रेडियो. आई एम वीर इन फॉर अनुराग, गिविंग यू कंपनी ऑल द वे टिल 4 PM. सो स्टे ट्यून्ड.
1: WhatsApp message Leica Gold now on 0744 23 23 23. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch online or SBI Yono mobile app. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Ye hai
3: Leica Gold.
2: Kyunki saans bhi kabhi.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saans Bhi Kabhi Bahut Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour. From the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
6: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
7: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
8: Ma Krupa Foundation UK taraf thi Srimad Bhagavat Saptah Gnan Yagna nu open invitation 29 September thi 5 October sudhi roj bapore 3 vage સાંજે 6 વાગ્યા સુધી. કથા વાચન કરશે પૂજ્ય શ્રી જિગ્નેશ દાદા. વેન્યુ 10 Stonefield Way, ફર્સ્ટ ફ્લોર, યુનિટ 2, સાઉથ રાઇસલિપ, HA40JS. રોજ કથા પછી મહાપ્રસાદ, પોથી યાત્રા, કપિલ નારાયણ કથા, કૃષ્ણ જન્મ, ગોવર્ધન લીલા, રૂકમિણી વિવાહ અને પૂર્ણાહુતિ હવન જેવા પવિત્ર પ્રસંગોમાં જરૂર જોડાઓ. વધુ માહિતી માટે કોન્ટેક્ટ કરો 0777-228-7509.
1: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
9: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी.
10: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन.
9: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम.
10: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए. विजिट विवेक हाउस वॉटफुट. कॉल 0192322-7274. बुक योर टेबल टुडे.
11: London, get ready for an unforgettable night.
12: Legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shahzaman Ali Khan,
11: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
12: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
11: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
12: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
11: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
13: वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फौरन का फोन मिलाएं 0208-839-0880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन.
14: Are you sitting on a mortgage and getting nothing
7: back. What if your remortgage paid you?
3: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket, not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
7: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
3: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
7: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
14: हैरो इंतजार खत्म. मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है. सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार. तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद. आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो. स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन. खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना.
15: Oh, look at that bump. You're glowing.
16: Oh, thanks.
15: Have you had your whooping cough and RSV vaccines yet?
16: Oh, no, not yet.
15: Definitely get both. My niece caught RSV after she was born. It was awful.
17: RSV and whooping cough can cause serious illness in young babies. Being vaccinated during pregnancy passes on immunity and helps protect your baby in their first months of life. Speak to your midwife or GP practice. Stay strong, get vaccinated. Search nhs.uk/pregnancy vaccinations.
18: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
19: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
20: कह दूं तुम्हें
21: हाँ
20: या चुप रहूं
21: ना
20: दिल में मेरे आज क्या है
21: क्या है

0: कह दूं तुम्हें, जी हाँ, आरजू द वीक इज शशि कपूर एंड दिस सॉन्ग इज सच अ लवली सॉन्ग फ्रॉम द सुपरहिट मूवी दीवार. आई मीन इस मूवी में अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर का अंदाज ही कुछ और था. क्या डायलॉग्स थे, यू नो, शशि कपूर के अंदाज में. मेरे पास माँ है, भाई तुम साइन करते हो या नहीं. आई मीन दिस इज वन मूवी जो मैं कभी भी देख सकता हूँ एंड इट जस्ट टेक्स मी टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, लाइक टोटल बॉलीवुड मसाला.
1: Like a Gold Ace 5. Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे. दिस टाइटल ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ टू लेजेंड्स किशोर दा एंड रफी साहब फ्रॉम द सुपरहिट मूवी यादों की बारात. वेल थैंक यू सो मच फॉर योर प्यारे प्यारे मैसेजेस. बहुत सारे प्यारे गाने अभी भी हैं, सो स्टे ट्यून्ड.
1: फील गुड ट्रैक brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: aap sun rahe hain golden rag anurag ke saath.
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: Another romantic song from the superhit movie Maine Pyar Kiya and the vocals of SP Balasubramaniam and Lata Mangeshkar. Enjoy.

0: Disha Supreme Extra Long Grain Basmati Rice. Indulge with Disha. Available at all independent stores nationwide. Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
1: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-377-3633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
2: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
3: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
4: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
3: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
4: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
3: रॉयल चाय ब्रूड फॉर बिजनेस.
4: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
5: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
6: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
5: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
7: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही कीमत के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर, 181 अपर टूटिंग रोड, या विजिट कीजिए meenarjewelers.com. कॉल 0208-767-7627.
8: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
9: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
8: ये तो बताओ, कोई पता चला?
9: गुरु गुरु,
10: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रीजेंट होटल में
9: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है. सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
8: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए, सुबह से शीघ्र
10: शीघ्र शीघ्र. क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रीजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर.
11: टू बुक कॉल 0208-514-5400. बुक ऑनलाइन एट Eventbrite.
0: एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर Lyca रेडियो नेटवर्क.
12: Lyca रेडियो नेटवर्क प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर Ragasan. On Rug with Gold.

0: ये जो चिलमन है दुश्मन है हमारी, आमीन, इतना रोमांटिक सॉन्ग इन द वोकल्स ऑफ रफी साहब. आई थिंक काका जी वाज सो सो सो गुड. कहते हैं ना कि उनके जैसा रोमांस ऑन स्क्रीन कोई नहीं कर सकता था, एंड द वे ही वाज रोमांसिंग लीना चंद्रवरकर इन दिस मूवी, यू नो दैट पर्दा एंड लीना चंद्रवरकर का शर्माना वाज जस्ट सो मैजिकल. दिस सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी महबूब की मेहंदी, एंड इतने सारे मैसेजेस फॉर दिस सॉन्ग. वेल, आई एम श्योर देर आर लॉट ऑफ राजेश खन्ना फैंस इंक्लूडिंग मी.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: So your £1 in British sterling can get you up to 128 Indian rupees, 86 Afghani afghans, 371 Pakistani rupees, 164 Bangladeshi taka, 443 Sri Lankan rupees, 173 Kenyan shilling and approximately 1.33 US dollars.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: आप सुन रहे हैं गोल्डन राग अनुराग के साथ.
1: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: So gold's trading at £105.11 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Like a gold.
5: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with

0: I love when Asha Bhosle says नहीं नहीं नहीं नहीं इतना प्यारा वाला गाना अभी ना जाओ छोड़ के from the movie हम दोनों in the vocals of Asha Bhosle and Rafi साहब. I think Dev साहब was so so so romantic in this song.
1: ये है Like a Gold. तुम This part of the show is sponsored by O Hum Nawa Tum Dena Saath Mera every day at 8 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
2: This Diwali, don't just watch a show, experience the divine.
3: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए.
2: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है. Diwali Story, the journey of Ram and Sita.
3: A spectacular musical experience is coming to OVO Arena Wembley on the 27th of September. Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, Zee TV. An exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: हमारी रक्षक है वो.
1: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट.
5: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही है उन सबका मतलब क्या है, कौन कर रहा है ये?
1: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर. फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम.
6: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल्स फॉर रेस्टोरेंट्स कैफेज केटरर्स फूड टेकअवेज एंड फूड डिलीवरी सर्विसेज. ऑर्डर योर फ्री हेरल्ड कैटलॉग today. Call on 0208 507 7900 or download the catalog from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

0: चलो दिलदार चलो. वेल इस गाने के बाद वक्त हो चुका है फॉर मी टू से बाय. एक और गाना दिस आवर, सो यू स्टे ट्यून्ड एंड मैं आपसे जरूर जल्दी मिलूंगा, कज हमें राही प्यार के फिर मिलेंगे चलते चलते. फॉर नाउ एंजॉय दिस लवली ट्रैक इन द वोकल्स ऑफ आशा भोसले एंड रफी साहब.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.

0: बैक टू बैक दो गाने आपने सुने। पहला गीत मैंने चुना था फिल्म जानवर से, 1999 की फिल्म थी, करिश्मा कपूर थी इस फिल्म की हीरोइन। गाना गाया अलका याग्निक एंड सोनू निगम ने। दूसरा गीत एक अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल हुआ एंड ये गीत गाया था हरभजन मान एंड मुझे उम्मीद है कि आपको ये गाना पसंद भी ज़रूर आया होगा। हरभजन मान के साथ आई थिंक दिया सुनिधि चौहान ने एंड अगर आपके दिल को भा गया तो मुझे ज़रूर बताइए। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कैसे मिजाज हैं आपके। उम्मीद करती हूँ जहाँ भी हैं खुश हैं, खैरियत से हैं, ज़िंदगी के हर पल को इंजॉय कर रहे हैं, हमेशा तंदुरुस्त रहें, सेहतमंद रहें। ये दुआ ये प्रार्थना हमेशा आपके लिए करती आई हूँ और करती रहूँगी। इफ़ यू आर नॉट फीलिंग टू वेल, गेट वेल सून। इफ़ यू आर फीलिंग बिट डाउन तो कम ऑन, चीयर अप। लाइफ इज़ टू लिव, लाइफ इज़ टू इंजॉय। जी और शांत से मुस्कुराते, गुनगुनाते, चहकते महकते और थिरकते हुए। गाने तो आपकी अपनी प्रेजेंटर सरिता चुन चुन कर लाई है आपके लिए। अब मैं हूँ आपके साथ तो फिकर नॉट, आप जल्दी से अपने मूड को अच्छा कर लीजिएगा और मेरा साथ देने के लिए तैयार हो जाइए। वेल, गणेश चतुर्थी चल रही है, गणेश फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है एंड 10 दिन का ये फेस्टिवल होता है और 11th डे माना जाता है कि गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो इस साल विसर्जन जो है वो किस दिन होगा, कोई कह रहा है 25 को और कोई कहता है 26 को। तो जिस दिन भी विसर्जन होगा, गणेश जी हमेशा हमारे दिलों में स्थापित ही रहेंगे और वो हर आपका दुख दर्द जो है वो उसको दूर करते रहें और आप इसी तरह से गणेश जी की पूजा भी करते रहें जो मानते हैं। तो आप सबके लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ा लें।
1: दिस इज सरिता सबोवाल ऑन लाइक अ गोल्ड, SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: State Bank of India के जरिए अगर आप इंडिया में कहीं भी पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो काम बहुत आसान है। You can go into the branch and online कर सकते हैं और SBI Yono Mobile app अगर आपने डाउनलोड किया हुआ है तो आप घर बैठे ही पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। Terms and conditions apply and your £1 in British sterling can get you today 127 rupees and 90 paisa, but it depends ki aap kitne paise transfer kara rahe hain.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar. Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
2: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy
1: live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
2: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
1: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
2: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Hey, gorgeous! Join us for our exclusive shopping and lifestyle event featuring fashion, accessories and lots more.
2: Saturday 19th to Sunday 20th September at the Byron Hall, Harrow.
3: Get your free tickets. Book now using the promo code LIKA on heygorgeous.events. Brought to you by Recommendation and Avari Events.
2: Exclusive media partners LIKA Radio. Sponsored by Sari Pleeta, Shana Foods, Begin and Regrow.

0: क्या ज़बरदस्त गाना है, ओ यारा दिलदारा मेरा दिल करता। आदमी और इंसान, ये था फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर साहब का, सादिया बलबीर एंड जोगिंदर ने, और गाना बहुत ही प्यारा था। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने इस गीत को एंजॉय किया। जिन मेरे साथियों ने मेरे बिना पूछे ही मुझे बता दिया है कि क्या कॉमन है आज के गीतों में, तो थैंक यू सो मच, और ये तालियाँ आप ही के लिए हैं। थैंक यू, बड़े प्यार से आप सुनते हैं, अपने होने का एहसास दिलाते हैं, तो इसी तरह से प्रोग्राम को एंजॉय कीजिएगा। कोई ख़ास गाना आपको याद आ रहा है दिलदार या दिलदारा पे, तो आप मुझे ऑलवेज व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मुझे बताने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये तो बता दीजिए कहाँ बैठे सुन रहे हैं, मिडलैंड्स में हैं आप, मैनचेस्टर में सुन रहे हैं, या फिर लंदन और आसपास के इलाकों में, जहाँ भी सुन रहे हैं, लाउड एंड क्लियर ये अगर आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो इसका मतलब कि आप प्रोग्राम इंजॉय भी कर रहे हैं, तो इसी तरह से इंजॉय करते रहिएगा।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: Diwali story ke bare mein aap bahut dino se hamare Like a Radio network par jankari le rahe hain, to ab main ye batana chahungi ki final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partner hai Like a Radio Network. It takes place on OVO Wembley Arena on Sunday 27th September. Doors open at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 till 9:30 p.m. Zyada jankari ke liye aur tickets ke liye log in to www.diwalistory. It's a diwalistory.com. तो अपनी टिकटें अभी से बुक करा लीजिएगा।
3: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: कुकर नूडल्स की जानिब से ये गीत आप तक पहुंचा और उम्मीद करती हूँ पसंद किया। ज़माने को दिखाना है 1981 की फिल्म थी, जिस फिल्म से मैंने इस गीत को चुना, आपके दिल को भाया, आपने मुझे मैसेजेस लिखे, थैंक यू एवर सो मच। आर डी बर्मन साहब की आवाज़ और उनकी कॉम्पोजिशंस का क्या कहना, बहुत अलग से म्यूज़िक डायरेक्टर थे, बहुत टैलेंटेड म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और आपके जो फेवरेट गाने हैं आर डी बर्मन साहब के, एक दिन ज़रूर प्रोग्राम में मैं शामिल करने की कोशिश करूंगी, इन एटलीस्ट इन वन आवर। सो क्या कर रहे हैं इस वक्त, कहाँ जाने की तैयारी है, अगर बताना चाहते हैं तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो कि क्या प्लान है आज की शाम का।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles, is coming with more flavors and healthy option in a convenient bowl. Coca Noodles, quick and tasty noodles in 12 flavors.
2: Leica Radio Network, broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands, with the UK's biggest Asian hits. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Engineer a car and you get a car. Engineer a dream and you get a Honda. Wide open roads, endless horizons, freedom at every turn. Right now, with up to £4,000 off selected models, you can own your dream Honda. Visit your Honda retailer and order before 30th of September. Honda, your dreams engineered. Retail customers only. Terms and conditions apply. Visit honda.co.uk or your Honda retailer.
4: ये है लाइका गोल्ड।
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
6: ट्रैवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
7: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com।
8: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone.
9: 11, 11. Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place. 11, 11.
9: Call the Danube Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
11: Danube 11, 11. Danube Properties.
12: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
13: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
12: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
13: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरिना वेम्बली ऑन द 27th ऑफ सितंबर।
14: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
13: बुक नाउ ऑन diwalistory.com बिफोर दे आर गॉन। ऑफिशियल टीवी पार्टनर जी टीवी एंड एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क।
15: यू हैव वन न्यू वॉइस मैसेज। New message.
16: Hi Jess, it's Kate, your midwife. I just wanted to follow up on booking your flu vaccine. Flu's always pretty awful, but can be even worse when you're pregnant. Please give me a call back.
17: Flu can put both you and your baby at increased risk of severe complications, including early labour and low birth weight. But the vaccine gives you both the best protection from flu. Speak to your midwife, GP practice or pharmacist. Stay strong. Get vaccinated.
18: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेशन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823।
19: Winter's coming and Mira Boilers pre-winter sale is on. For the first 100 customers, get a Bosch 25 kilowatt boiler, fully fitted from just £1,890 with a 7-year guarantee.
20: Don't miss out. Call 0208 150 2025 today or visit miraboiler.com. Terms and conditions apply. Mira Boiler, get ready for winter.
21: The cycle of love. From executive producer Priyanka Chopra Jonas comes an epic true life adventure.
22: I left behind everything I knew.
21: The story of a man from Delhi who cycled 6,000 miles for love. Critics are calling it extraordinary, heartfelt and unforgettable.
22: If we don't love ourselves, love cannot reach to others.
21: The Cycle of Love. In cinemas now. Book today at thecycleoflovefilm.com.
0: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
2: It's This Weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
1: નમસ્કાર. માર્ચ 2027માં મહારાજા ટૂર્સ સાથે માણો જાપાનનું અદ્ભુત ચેરી બ્લોસમ સીઝન. આવો અને જુઓ જાપાનનું સુંદર ચેરી બ્લોસમ, શ્રેષ્ઠ સાઇટ સીન, સ્વાદિષ્ટ ઇન્ડિયન જમવાનું અને ઘણા બધા યાદગાર અનુભવો. માત્ર 4,499 પાઉન્ડ પર પર્સન, જેમાં ફ્લાઇટ્સ, એકોમોડેશન અને એક્સકર્ઝન્સ બધાનો સમાવેશ છે. સીટ્સ લિમિટેડ છે, એટલે આજે જ તમારું બુકિંગ કરો. વિઝિટ મહારાજા ટૂર્સ ડોટ કો ડોટ યુકે ઓર કોલ 07956154846.
2: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasa.

0: का नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है।
1: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर।

0: What a beautiful song. चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो. और ये गीत मीना कुमारी जी पर पिक्चराइज हुआ था. फिल्म का नाम था पाकिज़ा. 1972 में आई थी ये फिल्म. और शोहरत देखने से पहले ही मीना कुमारी जी इस दुनिया को अलविदा कह गई. जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो इतनी ज़्यादा नहीं चल पाई थी, लेकिन उनकी डेथ के बाद इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया था. और इनकी बहुत सी डुप्लीकेट सुनने में आया कि पद्मा खन्ना ने किए थे डांस भी. सो उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन भी ठीक है और आपको पसंद भी आए. ऐसे ही यादगार गीत प्रोग्राम में शामिल रहेंगे. मेरा साथ देते रहिएगा इसी तरह से ऑन लाइका रेडियो.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: अगर आज आप अपने पैसे ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो बता दें कि LemFi वाले आपको बहुत अच्छे रेट्स दे रहे हैं. कुछ कंट्रीज के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ. वन स्टर्लिंग पाउंड कैन गेट यू इंडियन रुपीज 128.12, अफगानी से 86.85, पाकिस्तानी रुपीज 370.95, बांग्लादेशी टका 164.32, श्रीलंकन रुपी 443.88 एंड केनियन शिलिंग्स 173.31, यूएस डॉलर्स 1.33.
1: Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LIKA Gold. LIKA Gold. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: चलिए भी जल्दी से आपको बता दें कि गोल्ड किस रेट में बिक रहा है आज. मार्केट में गोल्ड का रेट है आज 105 पाउंड्स एंड 15 पेंस पर ग्राम.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: Laika Gold.
3: This part of the show is sponsored by Big Boss Season 20. Every day at 9:30 PM on Colors TV and Jio Hotstar. Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.

क्या ज़बरदस्त गाना तेरे प्यार में दिलदार, जो है मेरा हाल इज़हार। लता जी की आवाज़ में गाया हुआ ये गीत मेरे महबूब फिल्म से मैंने चुना था। 1963 में ये फिल्म आई थी जिसे डायरेक्ट किया था H.S. रिवेल साहब ने, और आई थिंक 4th of January को ये फिल्म 1963 में रिलीज़ हुई थी। नौशाद साहब का था संगीत, आपके मन को भाया ये जानकर खुशी हुई। इसी तरह से अपने मैसेजेस मुझ तक पहुँचाते रहिएगा।

0: दिस द सेकेंड आवर ऑफ द शो. बैक टू बैक दो गाने आपने सुन लिए, धड़कने सांसें, अनुराधा पौडवाल एंड पंकज उदास की आवाज़ें, एंड फिल्म का नाम था बेटा, 1992 की फिल्म. और दूसरा गीत मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म मोहब्बत, एंड उदित नारायण एंड कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ें थी. प्रोग्राम के इस आवर में भी मिले जुले गीत शामिल रहेंगे, इसी तरह से आप मेरा साथ देते रहिएगा.
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK ke zariye agar aap paise India mein kahin bhi transfer karana chahte hain, to you can walk into the branch, you can go online aur SBI Yono mobile app ke zariye ghar baithe paise transfer ho sakte hain. Terms and conditions are always there. Your £1 in British sterling can get you up to 127 pound rupees and 90 paisa.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range.

0: What a beautiful song. और फिल्म का नाम था चिराग. इस फिल्म में काम किया था सुनील दत्त एंड आशा पारिक ने. एंड फिल्म को बनाया था राज खोसला साहब ने, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन. इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मदन मोहन जी ने और बहुत ही यादगार गीत हमने शामिल किया आपके लिए ऑन लाइक अ रेडियो नेटवर्क. जिस भी जरिए से सुन रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आप इंजॉय करेंगे इन सभी गीतों को. दिस सॉन्ग एंड ऑल्सो रेस्ट ऑफ द सॉन्ग्स इन दिस आवर आई एम गोइंग टू प्ले सम ऑफ मदन मोहन जी के हिट गाने. मदन मोहन जी के बारे में जानकारी नहीं दे रही हूँ, इट्स नॉट हिज बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरी, लेकिन मैंने वैसे ही सोचा कि उनके कुछ गाने शामिल किए जाएं. तो ये था फिल्म चिराग का बहुत ही प्यारा सा गीत जो आप तक पहुँचाया किसने.
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
3: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: दिस इज़ एन एवरग्रीन सॉन्ग, बहुत पसंद किया जाता है इस गीत को, और ये गीत ख़ास तौर पर मेरी तरफ से मेरे सभी सुनने वालों के नाम था, जिसे मैंने चुना था फ्रॉम द फिल्म अनपढ़। बलराज सानी थे इस फिल्म में, धर्मेंद्र जी थे एंड माला सिन्हा। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था मदन मोहन जी ने और राजा मेहदी अली खां साहब ने इस फिल्म के गीत लिखे थे। बहुत ही खूबसूरत गीत और एवरग्रीन है, जब भी सुनो बहुत अच्छा लगता है। क्यों, आपको कैसा लगा?
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोको नूडल्स, जस्ट एड हॉट वाटर एंड एंजॉय कोको नूडल्स इन 3 मिनट्स। दिस इज सरिता सांबरवाल ऑन लाइक अ गोल्ड।
0: भी सरिता आपको जल्दी से बता दे कि उस्ताद राहत फ़तेह अली खां आ रहे हैं। TCO presents उस्ताद राहत फ़तेह अली खां, अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब ऑन हिज 30th डेथ एनिवर्सरी। वन डेट ओनली, जी हाँ, नोटिस कीजिएगा, वन डे ओनली, एक डेट के लिए आ रहे हैं, एंड दैट इज़ संडे 18th April 2027। अभी से नोट कर लीजिए अपनी अपनी डायरीज में। O2 लंदन में ये परफॉर्म करेंगे एंड रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो। और साथ ही बता दूं कि 90s बॉलीवुड लेजेंड उदित नारायण परफॉर्म्स विद हिज सन आदित्य नारायण एट ओवो अरीना वेम्बले ऑन संडे 20th December। टिकट्स अवेलेबल फ्रॉम टिकट मास्टर एंड AXS। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर है लाइका रेडियो नेटवर्क, तो ये भी नोट कर लीजिएगा।
1: सरिता सांबरवाल, द बिगेस्ट क्लासिक्स ऑन लाइका गोल्ड।
0: Like a extra podcast ka episode 33 is now out. Myths and misconception about raising debts, hosted by Khush. Khush speaks to Meenal Sambre, founder of Samaria Global Finance, to break down myths around business debts. So, बहुत सी जानकारी अगर आपको चाहिए कि किस तरह से बिजनेस को चलाना चाहिए एंड ऑल दैट, तो यू मस्ट वॉच दिस। एंड लाइक अ एक्स्ट्रा पॉडकास्ट इज़ अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेज़न, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइक अ एक्स्ट्रा इज़ हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: Join us at the Mercedes-Benz Vans Advantage event from the 14th to the 23rd of September. Order your new or approved used Mercedes-Benz van and unlock unmissable event-exclusive offers. And that's on top of existing offers across the range. Your Mercedes-Benz van is waiting for you. Take advantage and drive your business forward. Search Mercedes-Benz Advantage online and book your appointment at your local dealer. Mercedes-Benz Vans. We've got your back. Offers end 23rd of September. Selected models subject to availability at participating dealers. T's and C's apply.
3: ये है लाइका गोल्ड। ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
3: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल हब world.com।
5: दिस दिवाली डोंट जस्ट वॉच अ शो, एक्सपीरियंस द डिवाइन।
6: तैयार हो जाइए एक यादगार शो के लिए।
5: राम और सीता की कहानी अब स्टेज पर जिंदा होने वाली है। दिवाली स्टोरी, द जर्नी ऑफ राम एंड सीता।
6: अ स्पेक्टेक्युलर म्यूजिकल एक्सपीरियंस इज कमिंग टू ओवो अरीना वेम्बली ऑन द 27th of September।
7: प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो।
6: Book now on DiwaliStory.com before they are gone. Official TV partner, Zee TV. An exclusive radio partner, Laika Radio Network.
8: माया भाईनी मौजवाणमा थई जाओ रेडी। माँ कृपा फाउंडेशन्स UK प्रेजेंट्स भव्य डायरो। माया भाई आहिर, जयश्री भोजविया अने निर्मल सिंह झाला साथे 26 सितंबर 2026 ना रोज।
9: वेन्यू, फर्स्ट फ्लोर, यूनिट 3, 10 स्टोन फील्ड वे, साउथ राइसलीप, HA4 0JS।
8: टिकट्स 30, 40 and 50 pounds, लाइट रिफ्रेशमेंट इंक्लूडेड।
9: बुकिंग माटे कॉल करो रश्मि शाह 0772-287-509।
10: हेलो
9: લો, ધ વેઇટ ઇઝ ઓવર. પ્રખ્યાત સ્પાઇસ વિલેજ હવે હેરોમાં ખુલી ગયું છે. સિઝલિંગ મિક્સ્ડ ગ્રિલ્સ, સિગ્નેચર મસાલા ફિશ, સ્વાદિષ્ટ કરાહીઓ અને તંદૂરમાંથી નીકળેલા ગરમાગરમ ફ્રેશ નાન, સાથે સૌથી મોટા વેજીટેરિયન મેન્યુઝમાંથી એક અલગ વેજીટેરિયન કિચનમાં તૈયાર. તો ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સને સાથે લાવો અને માણો સ્પાઇસ વિલેજ નો અવોર્ડ વિનિંગ સ્વાદ. આવો 124 ડોમિનિયન પરેડ, સ્ટેશન રોડ, હેરો. સ્પાઇસ વિલેજ હેરો નાવ ઓપન. ખાવા, મળવા અને સેલિબ્રેટ કરવાનું તમારું નવું સરનામું.
10: London, get ready for an unforgettable night.
11: The legendary Ustad Rahat Fateh Ali Khan, joined by his son Shah Zaman Ali Khan,
10: comes to the O2 Arena London on 18th April 2027.
11: Brought to you by Pantheon, performing all his greatest hits.
10: And a very special tribute to the legendary Nusrat Fateh Ali Khan.
11: Powered by Pepe's Piri Piri in association with Berico and RGB Direct.
10: Tickets available from Ticketmaster and AXS. Radio partner Leica Radio Network.
12: Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
12: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
12: Email now info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
10: Celebrate Ganesh Chaturthi with Shiv Shakti Ganesh Mandal UK. Join us on Saturday the 19th and Sunday 20th of September at Richard Challoner Secondary School in New Malden. Enjoy Ganesh Puja, live bhajan jamming, mantra chanting, aarti, prasad and Ganesh Visarjan. Entry is completely free, so bring your family and join the celebrations. Special guest Bali Brahmbhatt. For more details, contact Kanchan Sharma on 07-429-683-913. Radio partner Leica Gold.
14: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
15: 24 days South America in November or April. First 10 passengers up to 300 off. Call Sona Tours on 0208-951-0111 or visit sonatours.co.uk.
16: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app.
17: Sarita Subbarwal with your weekend classics.

0: एक और सदाबहार गाना। अब ये मत समझिएगा कि ये विंटेज गोल्ड प्रोग्राम चल रहा है, नहीं नहीं, आ रहे हैं मेरे बाद, आएंगे सैंडी शाह और ऐसे बहुत से यादगार गीत आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मैंने सोचा कि प्रोग्राम के इस आवर में कुछ एक गाने मदन मोहन जी की कॉम्पोजिशंस जो सभी को बहुत पसंद आती हैं शामिल कर दूँ। तो ये गीत मैंने फिल्म गज़ल से चुना था जो 1964 में रिलीज़ हुई थी। वेद मदन ने इसे डायरेक्ट किया था, सुनील दत्त एंड मीना कुमारी ने इस फिल्म में काम किया था, साहिर जी ने लिखे थे सारे गीत इस फिल्म के और मदन मोहन जी का यादगार ब्यूटीफुल म्यूजिक। उम्मीद करती हूँ गीत आपने पसंद किया जिसे मोहम्मद रफी साहब की आवाज में मैंने आप तक पहुंचाया।
1: Sarita Sabharwal with your weekend classics. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें। LemFi वाले दे रहे हैं आपको एक ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड के बदले इंडियन रुपीज 128.12, अफगान अफगानी 86.85, पाकिस्तानी रुपीज 370.95, बांग्लादेशी टका 164.32, श्रीलंकन रुपीज 443.88 एंड केनियन शिलिंग्स 173.31 एंड US डॉलर्स 1.33.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LEICA. Download LemFi now. T's and C's apply. Sarita Sabharwal with your weekend classics.
2: LEICA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And gold ka rate is vak chal raha market mein £105.15 ka 1 gram sona.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
3: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Leica Gold in London, the Midlands and Manchester.

0: इस हफ्ते हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक रहे शशि कपूर, उन्हीं की फिल्म जब जब फूल खिले से चुना था मैंने इस गीत को. ही इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, सो मुझे उम्मीद है कि आपके भी फेवरेट जरूर रहे होंगे शशि कपूर साहब. आइए आगे बढ़ते हैं.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit derryvalley.net.

0: एक और बोनस में आपको मदन मोहन जी का गीत मिल गया। जी हाँ, ये भी कॉम्पोजिशन उन्हीं की, फ्रॉम द फिल्म लैला मजनू। उम्मीद करती हूँ आपने इंजॉय किया इस गीत को भी।
1: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर स्पॉन्सर बाय कोका नूडल्स, मोर फ्लेवर्स, मोर कन्वीनियंस, मोर यम। ग्रैब योर कोका बोल टुडे।
2: दिस इज लाइक अ गोल्ड, a part of the number one Asian commercial radio network in Greater London. The Leica Group. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: चलिए एक बार फिर से आपको करेंसी का रेट बता दें। LemFi वाले दे रहे हैं एक पाउंड के बदले 128 रुपीस एंड 12 पैसा, अफगान अफगानी से 86.85, पाकिस्तानी रुपीस 370.95 एंड बांग्लादेशी टका 164.32।
2: Leica Radio. Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is Sarita Sabharwal on LAIKA Gold.
3: LAIKA Gold.
2: Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, PoojaSweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is trading today as £105.15 per gram.
2: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, PoojaSweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
4: सना से लाइक अ गोल्ड लंदन और ग्रेटर मैनचेस्टर में मेरी और आपकी मुलाकात मंडे टू फ्राइडे शाम 7 बजे से 10 बजे रात बिग शो में जारी रहती है। बिग शो सुनना भूलिएगा मत।
0: जी हाँ, रितु कल भी आपका साथ देगी 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 1 बजे से लेकर 4 बजे तक का आते हैं अनुराग, और 4 से 7 सरिता की बारी है, 7 से 10 फिर आते हैं सैंडी शाह, और उसके बाद फिर हमारी गोल्डन नाइट्स में आप बैक टू बैक म्यूजिक सुन पाते हैं। बट डोंट फॉरगेट, ब्रेकफास्ट शो आप सुनते हैं दीप राजा के साथ ऑन वीकेंड्स। अब मेरे जाने का वक्त है, सैंडी शाह इधर होंगे तो दूसरी तरफ होंगी सोनिया, एंड आप मैनचेस्टर में सुन पाएंगे अंकुर को। अपना और अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं कल अगर जिंदगी ने साथ दिया। बाय बाय, टेक केयर।
5: ये है लाइका गोल्ड।
6: This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai, every day at 7 PM on Star Plus, and stream it anytime on Jio Hotstar.
7: The buy is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
8: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
9: Dubai is the place. 11, 11.
8: Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
10: Danu 11, 11. Danu Properties. Danu 11, 11.
11: वेडिंग्स, सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
12: गेट रेडी यूके, स्नेल ग्रोवर इज coming live with Gutti, Dr. Mashur Gulati, Rinku Babi and more surprises on the night.
13: Expect music, madness, family entertainment and non-stop laughter. Sunil Grover Live UK Tour 2026 happening on the 29th of October at the Over Arena Wembley in London.
12: 31st October, Mattioli Arena Leicester. Produced by ImagineX Global and Tim's Media Productions.
13: Supporting mental health and well-being awareness. Tickets are on sale now via Ticketmaster, Eventbrite and AXS.
12: For more information, contact 07585 801 801. Official radio partner, Leica Radio Network.
14: Southall Travel invites you to the beautiful city of Dubai. Enjoy the great shopping experience, luxury hotels, water sports, golf courses, gold souk, desert safaris and dhow cruise. There's never been a better time to go to Dubai.
15: Call 0208 574 8410. 0208 574 8410.
16: Southall Travel can take you there. South Old Travel. At all protected.
17: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344, a 24-hour line.
18: Discover the magic of Switzerland with Mantra Holidays Scenic Swiss Tour from the stunning Swiss Alps to Interlaken, Lucerne, Mount Titlis and more. And this October half term, we've got our lowest price of the year. Call 0203-773-633 or visit mantraholidays.co.uk.
19: है प्रसन्न महालक्ष्मी कहती है बोलो प्रेम की भाषा
20: Diwali Story, The Journey of Ram and Sita.
21: Book now on DiwaliStory.com. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
22: बोले, तूने क्या कर रहा है रे?
23: अरे गुरु, आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ.
24: ये तो बताओ, कोई पता चला?
23: गुरु, गुरु.
25: इस 6 नवंबर को The Prince Regent Hotel में
23: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है.
25: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर.
26: साधु, तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए. सुबह से शीघ्र
25: Crazy Funky Show at the Prince Regent Hotel on the 6th of November.
27: To book call 0208-514-5400. Book online at Eventbrite.
18: Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
28: London, are you ready? Raghav Ends presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
29: Sarita Sabharwal with your weekend classics.

0: और भाई ये अंदाज फिल्म का गाना था और इस फिल्म में वही थे जिनके बारे में मैंने पहले पूछा कि भाई रामचंद्र कह गए सिया से कौन थे स्क्रीन पर। जी हाँ जी, दिलीप कुमार थे और अंदाज फिल्म में भी वही थे। और अंदाज फिल्म तो 1940 लगभग 1950 के आसपास ही समझ लीजिए आई थी। और जबकि आप जो पहली फिल्म का गाना सुना था आपने कॉपी फिल्म, वो 1970। सोचिए भाई लगभग 1945 से अपना करियर शुरू करा, लगभग 45-46 एक बार वेरीफाई करना होगा, पर 40 के दशक में अपना करियर शुरू करा। और दिलीप कुमार साहब काफ़ी लंबे समय तक लगभग 1980-1990 की भी कुछ फिल्मों में आए थे, कर्मा फिल्म में थे वो भाई, है कि नहीं। तो दिलीप कुमार साहब के दो गाने आपने अभी तक सुन लिए तीन गानों में से, बड़ी अच्छी बात है भाई। फिलहाल ये गाना आप तक डेरी वैली ने पहुँचाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: Feel Good Track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: And final few days to go to the Diwali story brought to you by Sanatan Events and exclusive radio partners Laika Radio Networks. It takes place at OVO Wembley Arena on Sunday 27th of September. Doors opens at 4:30 p.m. with a student pre-show from 5 p.m. to 5:45 p.m. and the main performance from 6:15 p.m. to 9:30 p.m. So, bhai, apne tickets le lijiye www.diwalistory.com se.
1: London's biggest classics all day. This is Laika Gold.

0: हाय हाय ये निगाहें, हाय हाय हाय ये निगाहें।
1: पेंग इस फिल्म का ये गाना देवानंद के ऊपर फिल्माया गया, बड़ा ही मस्ताना सा गाना। आवाज किसकी है?
0: भूल गया राही।
2: अरे कर दे शराबी जिसे चाहे जिसे चाहे, मैं तो भूल गया राही।
1: जी हाँ, किशोर कुमार थे ये। और ये संदेश आपको मर्सिडीज बेंज वेंस की ओर से लाइक अ गोल्ड रेडियो के सहयोग से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब आप अपना खुद का बिजनेस चलाते हैं तो आपकी वेंस सिर्फ आने जाने का साधन ही नहीं, आपकी रोजी रोटी और इज्जत सब उसी पर निर्भर करता है। इसी सोच के साथ मर्सिडीज बेंज वेंस लेकर आया है अप टाइम प्रॉमिस, आपके बिजनेस को लगातार चलाते रहने के लिए अनेकों फायदों का एक पैकेज है, जैसे 24/7 रोड साइड असिस्टेंस, ज़्यादा देर तक वर्कशॉप, गाड़ी की रियल टाइम मॉनिटरिंग और भी बहुत कुछ। यानी आपकी वैन खराब होने पर आपके बिजनेस को बिना रुके आगे बढ़ते रहने के लिए जो कुछ भी चाहिए भाई साहब, सभी एक जगह है। मर्सिडीज बेंज वैन्स आपके साथ है। आज ही सर्च करें और अप टाइम प्रॉमिस के बारे में और जानें। नियम और शर्तें लागू। मर्सिडीज बेंज वैन्स अप टाइम प्रॉमिस, कुछ पात्रता मानदंडों, वाहनों की अनुकूलता और मर्सिडीज बेंज के अधिकृत रिपेयरर से सर्विस करवाने पर निर्भर करता है। इसलिए कहते हैं भाई, नियम और शर्तें लागू होगी। और भी जानकारी चाहिए, जाइए mbvans.co.uk/uptimepromise।
3: Classics to make your weekends feel good. This is Sandy Shah on Like a Gold.

0: अपनी सुरीली आवाज के साथ मुकेश सुहागरात फिल्म का एक गाना। और भाई सुनने वाले सोच रहे हैं कि आज यहाँ पर कौन है, शायद शुरुआत मिस करती, भाई मैं अपना नाम बार बार नहीं बताता, चलिए फिर भी बता देता हूँ। आज विंटेज गोल्डमर चंडी शाह की जगह कौन है वो? हाँ जी, मैं हूँ अभिषेक दीक्षित, आपके साथ टेम्पररी परमानेंट परमानेंटली टेम्पररी टाइप स्टेटस है, यहाँ पर आते जाते रहते हैं जब भी कोई नहीं होता। और जैसा कि अगर आपने पहले कभी सुना होगा, भाई विंटेज गोल्ड से थोड़ा दिल लगा हुआ है, अगर इसको कवर करने का मौका मिलता है तो ज़रूर आप पहुँचते हैं, आ धमकते हैं लगभग। फिलहाल आपने बढ़िया सा गाना सुना मुकेश की आवाज़ में, मुझे लगता है मुकेश जी की आवाज़ में एक दो गाने हो गए, अब दूसरे सिंगर्स को भी थोड़ी सी जगह देनी होगी, तो चलिए लता मंगेशकर की ओर चलते हैं।
1: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games and a bit of Yeah Ya Wo. Only like a gold.

0: आपका नया स्टेशन लाइका रेडियो गजल्स बहुत जल्द आ रहा है.
1: विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह ऑन लाइका गोल्ड ग्रेटर लंदन.

0: London's biggest classics all day. Like a gold.
1: Dilon ke naate hain wo jode nahi jaate.
2: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ के साथ हम इस आवर के एंड तक पहुंच गए हैं भाई. समझौता फिल्म का गाना, और उसके पहले आपने मन्ना डे की आवाज़ सुनी थी आकाशदीप से. सुनिए मोहम्मद रफ़ी को.

0: रेलगाड़ी चली जा रही है और रेलगाड़ी में बैठे हैं देवानंद। नीचे की बर्थ पर और ऊपर की बर्थ पर कौन है हमारी अभिनेत्री, उनका नाम याद आइए तो बताइए। और बोल रहे हैं कि अपनी तो हर आह एक तूफान है, ऊपर वाला जान कर अनजान है। आसपास बैठे हुए लोग सोच रहे हैं कि भाई भगवान को याद किया जा रहा है। भगवान को नहीं भाई, ऊपर जो बड़ी सुंदर सी अभिनेत्री बैठी है उन्हें इशारों में कुछ बताया जा रहा है कि भाई ऊपर वाला जानकर अनजान है। काला बाजार फिल्म का ये बढ़िया सा गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, भगवान को नहीं, अभिनेत्री जो थी जिनका नाम आपको बताना है उनको संबोधित, मतलब उनकी तरफ इशारा करते हुए बताया गया। उसके पहले पहला गाना मुनीम जी फिल्म का गाना था और मैंने आप लोगों को भटकाने के लिए कहा कि ये गाना होगा लता मंगेशकर की आवाज़ में, पर जी नहीं, सुमन कल्याणपुर की आवाज़ थी, पानी में चले। फिलहाल लाइक अ गोल्ड पर आप हैं और विंटेज गोल्ड सुन रहे हैं, सेकंड आवर की शुरुआत हुई है। आगे बढ़ने के पहले कुछ रुपए पैसों की बातचीत।
1: ये है लाइक अ गोल्ड
0: और

0: Wide open roads, endless horizons, freedom at every turn. Right now, with up to £4,000 off selected models, you can own your dream Honda. Visit your Honda retailer and order before 30th of September. Honda, your dreams engineered. Retail customers only. Terms and conditions apply. Visit honda.co.uk or your Honda retailer.
1: Ye hai Leica Gold.
2: Leica Gold.
3: Kyunki saas bhi kabhi.
4: This part of the show is sponsored by Kyunki Saas Bhi Kabhi Bahut Thi. Every day at 9 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
5: हमारी रक्षक है वो
6: बालाजी टेलीफिल्म्स प्रेजेंट्स द वन फोर्स ऑफ द फॉरेस्ट
7: मुझे ये जो अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं उन सबका मतलब क्या है कौन कर रहा है
6: मिस्ट्री फैंटेसी एक्शन द वन स्टारिंग सिद्धार्थ मल्होत्रा एंड तमन्ना भाटिया इन सिनेमास फ्राइडे 25th सितंबर फॉर यूके रिलीज डिटेल्स फॉलो बकरानिया मीडिया ऑन इंस्टाग्राम
8: दुबई इज एन अपॉर्चुनिटी सो नाउ बी पार्ट ऑफ इट क्रिएट वेल्थ विद अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट एवरी मंथ डैनी प्रॉपर्टीज दुबई हैज समथिंग फॉर एवरीवन
9: Danube Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
10: Dubai is the place.
9: 11. Call the Danube Properties London office today on 02 03 963

0: और पिछले गाने के बारे में तो भाई आप लोगों ने बहुत सही सही बता दिया कि ऊपर वहीदा रहमान बैठी थी, पर अगर आपने इस गाने के गायक कलाकार का नाम बता दिया तो मान जाएंगे आपको। सुनिए उन्हें एक बार। कौन थे गाने वाले बताइए मुझे, बड़े ही अच्छे गाने वाले थे। उनका एक और गाना सुनाऊंगा इस आवर में।
1: Feel Good Track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.

0: ये तो आप समझ ही गए होंगे कि बूट पॉलिश फिल्म का गाना है। मधुबाला जवेरी, मन्ना डे और उनके साथ में आशा भोंसले भी थी। मन्ना डे ने बूट पॉलिश फिल्म में एक बड़ा ही अच्छा गाना गाया है। मैं वही गाना ढूंढ रहा था पर अभी अभी किसी और प्रेजेंटर ने उस गाने को अपने प्रोग्राम में लगाया था तो बजा नहीं पाया, पर ये भी बढ़िया सा गाना। आने जाने वाले लोगों से एक आग्रह, मतलब उनको इनवाइट करते, भैया हम बूट पॉलिश कर रहे हैं, यहाँ पे आके थोड़ा सा करवा लीजिए गा के और पॉलिश के कलर भी बताए। इतने बढ़िया गाने किसी भी काम को करके बताने के भाई विंटेज गोल्ड पर ही बनते हैं। अधिकतर तो प्यार मोहब्बत के गाने पेड़ों के आसपास घूमते हुए हीरो हीरोइन ही पाए जाते हैं, पर बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना भाई बूट पॉलिश के ऊपर बना हुआ बड़ी अच्छी फिल्म थी, अगर आपने देखी हो तो। फिलहाल आगे पढ़ेंगे और जियो स्टार से एक बड़ी अच्छी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ रही है। यहाँ पर कैच द ब्रांड न्यू गेम शो इंडिया के टॉप 1% होस्टेड बाय अनिल कपूर एवरी वीकेंड एट 8 PM ऑन स्टार प्लस एंड जियो Hotstar. Download and subscribe to Jio Hotstar app now. Jio Hotstar is also available on Sky TV as an app.
1: This is Leica Gold. Vintage Gold with Sandy Shah on Leica Gold, Greater London.

0: और भाई साहब आपसे एक बार फिर से माफी मांगना चाहूंगा, यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण आपको थोड़ी देर और ऐसा लगा, शायद मुझे ऐसा लगा कि कोई गाना ऑन एयर नहीं जा रहा था, शायद जा रहा था पर म्यूट था, इसलिए मुझे दूसरा गाना लगाना पड़ा। वाह, फिलहाल ये एक प्रार्थना थी जो मन्ना डे की आवाज में ली गई सत्यम शिवम सुंदरम से। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 34 बाहर आ गया है भाई आप लोगों के लिए, आप लोग उसे ज़रूर सुनिए। दीप राजा स्पीक टू संगीता पांडे ऑफ IIW एंड गायत्री शिनॉय प्रिंसिपल बिजनेस एनालिस्ट अबाउट द मॉडर्न हरासमेंट। दे एक्सप्लोर मॉडर्न हरासमेंट एट वर्क फैमिली एंड व्हेन वन शुड स्पीक अप। लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब अमेजॉन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग डिवाइसेस। लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
1: Engineer a car and you get a car. Engineer a dream and you get a Honda. Wide open roads, endless horizons, freedom at every turn. Right now, with up to £4,000 off selected models, you can own your dream Honda. Visit your Honda retailer and order before 30th of September. Honda, your dreams engineered. Retail customers only. Terms and conditions apply. Visit honda.co.uk or your Honda retailer.
2: Leica Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन TravelHubWorld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल TravelHub 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट TravelHubWorld.com।
3: TravelHub, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
3: विजिट TravelHubWorld.com।
4: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
5: Two businesses,
6: same town,
5: same service.
6: One appears on page one of Google,
5: the other doesn't.
6: Guess which one gets the customer?
5: The truth is brutal.
6: The first page of Google gets the business.
5: Everyone else gets what's left.
6: So here's the real question.
5: When your customers search for what you sell, do they find you?
6: Visit heartyhanks.com and stop letting Google choose your competitors.
5: Hearty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
7: Dubai is an opportunity, so now be a part of it. Create wealth with a small investment every month. Danube Properties Dubai has something for everyone with its ambitious 11-11 initiative, aiming to complete 11 landmark projects in just 11 months. Featuring views, oases, oceans, elites, fashions and sports, there's an opportunity waiting for you. So why wait? Be part of Dubai's growth story. Call the Danube Properties Dubai London office today on 0203-963-5757 to arrange your meeting.
8: हैरो, इंतजार खत्म। मशहूर स्पाइस विलेज अब हैरो में खुल गया है। सिजलिंग मिक्स्ड ग्रिल्स, सिग्नेचर मसाला फिश, लजीज कराहीज और तंदूर से निकला गर्मा गर्म फ्रेश नान, साथ ही सबसे बड़े वेजिटेरियन मेन्यूज में से एक, एक अलग वेजिटेरियन किचन में तैयार। तो फैमिली और फ्रेंड्स को साथ लाइए और चखिए स्पाइस विलेज का अवार्ड विनिंग स्वाद। आइए 124 डोमिनियन परेड स्टेशन रोड हैरो। स्पाइस विलेज हैरो नाउ ओपन। खाने मिलने और सेलिब्रेट करने का आपका नया ठिकाना।
9: From breathtaking wedding jewelry to the finest diamond rings, do come in and see us at Minar Jewelers to create the perfect symbol of your love story. Minar Jewelers, the diamond specialists. Call 020-8767-2142.
10: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on Leica Gold Greater London.

0: सुमन कल्याणपुर की इस आवाज के साथ हम लगभग दूसरे आवर के एंड के आसपास आ पहुंचे हैं। बदतमीज फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे लाइक अ गोल्ड से, और चलिए सुमन कल्याणपुर जी को पूरा कर लेने देते हैं। हाँ जी, तो आप लोगों के मैसेज मिलते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि आप लोगों को गाने बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो बने रहिए, एक गाना और है। फिलहाल आपको छोड़े जाते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर के साथ।
1: Like a Radio Network.

0: मोहम्मद रफी की आवाज में अभिलाषा फिल्म का ये गाना 1960 के दशक में आई ये फिल्म। और उसके पहले पहला गाना जो आपने सुना गैम्बलर फिल्म का गाना था किशोर कुमार की आवाज में। जैसा मैंने कहा कि प्रोग्राम को थोड़ी सी गहराई देनी होगी क्योंकि आखिरी आवर है और थोड़ी ठंड भी बढ़ चली है। अपनी रजाइयों में, अपने कंबलों में अपने आप को समेटे हुए आप बैठे सुन रहे हैं लाइका गोल्ड पर विंटेज गोल्ड। भाई विंटेज गोल्ड के सफर में आज आपके साथ अभिषेक दीक्षित हैं। अगर आपने अभी अभी हमें ट्यून किया है तो भाई काफी कुछ मिस कर दिया, पर कोई बात नहीं, इस आवर में भी काफी सारे अच्छे अच्छे गाने हैं और विंटेज की डेप्थ को और थोड़ा गहरा करेंगे इस आवर में। फिलहाल कुछ रुपए पैसों की बातें।
1: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Your £1 in British sterling can get you up to 127.8 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI YONO mobile app. Terms and conditions apply.
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: Engineer a car, and you get a car. Engineer a dream, and you get a Honda. Wide open roads, endless horizons, freedom at every turn. Right now, with up to £4,000 off selected models, you can own your dream Honda. Visit your Honda retailer and order before 30th of September. Honda, your dreams engineered. Retail customers only. Terms and conditions apply. Visit honda.co.uk or your Honda retailer.
2: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. This part of the show is brought to you by Ye Rishta Kya Kehlata Hai every day at 7 PM on Star Plus and stream it anytime on Jio Hotstar.
4: माँ कृपा फाउंडेशन यूके तरफ थी श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ नु ओपन इनविटेशन 29 सितंबर थी 5 अक्टूबर सुधी रोज बपोरे 3 वाग्या थी सांजे 6 वाग्या सुधी कथा वाचन करशे पूज्य

0: advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
1: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915 or visit cashbackremortgage.co.uk.
0: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
2: Search is changing.
3: Customers aren't just using Google anymore.
2: They're asking AI.
3: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
2: One business, one recommendation.
3: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
2: Will your business be the answer?
3: Or the one that got left behind?
2: The future of search has already started.
3: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
2: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
4: From Southall Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
5: साउथहॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथहॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथहॉल ट्रेवल ऑन 0208574 8410। दैट्स 0208574 8410।
6: साउथहॉल ट्रेवल, at all protected.
7: It's this weekend. Hey Gorgeous, Byron Hall Harrow, supported by Leica Radio Network.
8: Leica Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par DAB digital radio par. Alexa pe bolo play Leica Gold aur online suno leicagold.com pe.
7: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
9: और लाइक अ गोल्ड पर आर्टिस्ट ऑफ द वीक का एक गाना बजाने का समय आ गया भाई। आर्टिस्ट ऑफ द वीक हैं शशि कपूर। चलिए उनकी फिल्म जब जब फूल खिले से एक बढ़िया सा गाना सुनते हैं।

0: हाँ जी, मोहम्मद रफी की आवाज पर हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक शशि कुमार मस्ती करते हुए।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: सुरैया की आवाज आपके घरों तक लाइका गोल्ड की ध्वनि तरंगों से।

0: मेरे नगमे।
1: अलिफ लैला फिल्म का ये गाना तलत महमूद की आवाज में
0: कहानी है,
1: और संगीत गया था श्याम सुंदर ने। भाई श्याम सुंदर, श्याम सुंदर ने अपने मेरे ख्याल से 1940 और 50 के दशक में काफ़ी फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया। विलेज गर्ल, भाई बाजार, मेरे ख्याल से ढोलक फिल्म भी उन्हीं की थी भाई। और भी अगर मौके मिले तो उनके ज्ञान कुछ और गाने बजाने की कोशिश करेंगे। श्याम सुंदर के म्यूजिक से सजा ये गाना, और आपने सुना लाइका गोल्ड से।
2: Sandy Shah live on Like a Gold, Greater London.
3: Sitare raat bhar

0: एक अपनी ही तरफ का अलग गाना माय लव फिल्म से सुनते हैं सितारे रात भर आशा भोंसले की आवाज़ में। और अगली आवाज़ जिसका बहुत देर से शायद बहुत सारे लोगों को इंतज़ार था, मुझे खुद को था भाई, केएल सहगल की आवाज़ मेरे सपनों की रानी शाहजहां से।
1: टाइमलेस मेलोडीज ऑन विंटेज गोल्ड विद सैंडी शाह।

0: ये है लाइका गोल्ड। travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाई ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनी वेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
1: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
1: विजिट travelhubworld.com।
2: Dubai is an opportunity, so now be part of it. Create wealth with a small investment every month. Danny Properties Dubai has something for everyone.
3: 11, 11. Danu Properties is delivering 11 projects in just 11 months.
4: Dubai is the place. 11,
3: 11. Call the Danu Properties London office today on 02-03-963-5757 and book your meeting.
5: Danu 11, 11. Danu Properties. 11.
6: बोले तूने क्या कर रहा है रे?
7: अरे गुरु आपके शो की टिकट ढूंढ रहा हूँ।
6: ये तो बताओ कोई पता चला?
7: गुरु गुरु
8: इस 6 नवंबर को द प्रिंस रिजेंट होटल में
7: किशोर कुमार यानी आपके संगीत का शो है।
8: सुरेश कुमार और इंद्रा ट्रेवल की पेशकश क्रेजी फॉर किशोर ऑन 6 नवंबर।
6: साधु तो शुभ काम में देर नहीं करनी चाहिए। सुबह से शीघ्र
8: क्रेजी फॉर किशोर एट द प्रिंस रिजेंट होटल ऑन द 6th ऑफ नवंबर।
9: टू बुक कॉल 0208-514-54 Book online at Eventbrite.
10: Exclusive radio partner Laika Radio Network.
11: The Bhajan Clubbing Hype lands in London this October as Backstage Siblings take the stage for their first ever UK performance. Experience the pioneers of Bhajan Jamming live on Friday 9th and Saturday 10th October at SKLPC UK Northolt. Two nights you won't forget. Tickets are moving fast. Book now at sklpc.com/BSS. Exclusive radio partners Laika Radio Network.
12: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
13: संगीत साधना है, साधना है। संगीत आत्मा की आवाज है।
14: हमने कोई भी रियलिटी शोज में इतने सारे म्यूजिशियंस देखा नहीं,
13: और जहां संगीत के जादू को इतनी शिद्दत दी जाए।
15: वो सिर्फ एक मंच नहीं, वो है हिंदुस्तान का संगीत स्थान।
16: सारेगामापा शुरू हो रहा है 19 सितंबर से, शनिवार और रविवार 7:30 बजे UK आपके अपने ZTV HD और Z5 ऐप पर।
17: From South Old Broadway to the London Tube, UK, the big bang of entertainment has arrived. Big movies? Check. Biggest of stars? Check. Unmissable reality drama to blow up your group chat? Absolute check. Jio Hotstar is now live in the UK. Download the app and subscribe today.
0: Laika Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Feel good tracks all weekend with Sandy Shah on

0: जी मेरा भी आकर जाने को जी नहीं चाह रहा, पर क्या करें भाई, अब 10 बजने वाले हैं, लगभग शो का टाइम खत्म ही हो चला। आप आज मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे फिर से कल निगाहें तो नहीं, पर एक बार फिर मेरा आपके साथ आमना सामना होगा। मैं कल फिर आपसे मिलूंगा विंटेज गोल्ड में, विंटेज गोल्ड पर।
1: फील गुड क्लासिक्स ऑल डे लाइक अ गोल्ड।
0: और ठंड के कारण मैं कुछ बोलते रुक गया, क्योंकि आज का जो अंदर एसी का टेम्परेचर है काफ़ी बड़ा हुआ। तो मैं कह रहा था भाई, आप लोगों ने मेरा साथ दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपसे कल फिर मिलूँगा। अपना ध्यान रखिए, अभी के लिए शुभ रात्रि अभिषेक की ओर से। अब शो का आखिरी गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: खतरों के खिलाड़ी एवरी सैटरडे एंड संडे एट 7:30 PM ऑन कलर्स एंड वॉच इट एनी टाइम ऑन जियो हॉटस्टार.
1: We're finally going home for the wedding.
2: I know. I can't wait to see everyone. The whole family will be there.
1: Flights booked, outfits packed. But what about our phones? We'll need them for directions, WhatsApp, photos, and keeping everyone updated.
2: That's why I'm using Simzy. Data in 220 plus destinations with 4G and 5G where available.
1: And we keep our number for WhatsApp and bank OTPs?
2: Exactly. Flat rate, no bill shock, and ready in just 3 minutes.
1: Perfect. Now, where's my wedding outfit?
3: Save an extra 10% with code ROMFREE10. Simzy, powered by Leica Mobile. Check if your phone works at simzy.com. Terms apply. Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
4: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
5: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर.

0: help ears, please, Garson!
1: Just like when you amplify your advertising with radio. 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
2: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सीइंग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410। साफो ट्रेवल Auto protected. Creative's Team Events and Peace Nation UK proudly presents the Virasat Tour UK with the one and only Lakhwinder Wadali. On Friday the 16th of October at Crystal Grand Slough. On Sunday the 18th of October at the ICC Birmingham. A memorable Sufi musical with Lakhwinder Wadali and his live band.
3: Book your tickets now on Eventbrite. For sponsorship inquiries, call 07949-250-376.
2: Celebrate Diwali at the iconic Royal Albert Hall.
4: Join legendary singer Kavita Krishna Murthy.
2: Live on Sunday the 1st of November. An unforgettable evening of spectacular Bollywood and devotional songs
4: with the Royal Philharmonic Concert Orchestra.
2: Get your tickets from royalalberthall.com and sanathanevents.org. Brought to you by Sanathan Events.
4: Exclusive radio partner, Laika Radio Network.
5: Classic Nahume. Aapke apne Laika Gold par.